0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें

फोन नंबर एक बार पुनः लिखें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: Magic Radio DS 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलवेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जिंदगी क्या है एक लतीफा है।
0: जिंदगी क्या है?
1: हाँ, जिंदगी क्या है एक लतीफा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर रेडीडीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निशिता।
2: हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: अच्छा दादा।
2: हाँ तो बच्चों,

0: एक मियां बीवी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

0: का आदमी हलवाई की दुकान पर गया। उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी मां।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सचिन।
2: कहाँ से बात कर
1: रहे?
2: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
1: बिल्लोरी।
2: कौन सा?
1: बिल्लोरी।
2: बिल्लोरी,
1: हाँ।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश के लिए।

0: रणवीर गुजराल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गोरखपुर से। और गाने के बोल है जब कोई बात बिगड़ जाए जब।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:11 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों सभी से निवेदन है कि बार बार कॉल ना करें, एक बार कॉल कर फरमाइश देखकर अपने मनपसंद कार्यक्रम सुने।

0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाने के बोले मैं आया था रेल से बस स्टेशन पे खड़ी थी।
1: कौन सा?
0: मैं आया था रेल से बस स्टेशन पे खड़ी थी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिगान।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: हाँ जी सर, नमस्ते।
5: नमस्कार
4: सर, नाम क्या है आपका?
5: नाम तो बाबू खान है हमारा।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी जी आर गारमेंट।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाने के बोल है मैडम, अभी तो धान था भूल गया मैं।
1: याद कर लो सर।
0: हाँ चलो सुन लो।
1: हाँ जी बताइए।
0: इस दिन से जुदा हम हुए, तारों ने चमकना छोड़ दिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: ज्योति राजपूत।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: करौली पाठक गंगापुर सिटी।
1: फोन पे गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: हर हर शंभू।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: थैंक यू.
1: यू वेलकम. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: विष्णु. मुझे
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैंने कॉलोनी.
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: काशियाला हॉस्टल लाइफ.
1: कौन सा?
2: हॉस्टल लाइफ.
1: कौन से सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हम नाम साहब, यो कह रहा हूँ साहब, मेरे दोस्त और ये सब याद कर रहे हैं आपको और ये गाना सुनना चाहते हैं, रात भर बस ये रहा है, सुबह उठ जाना है।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: खिल्लू टेलर सलेमपुर से। मेरे दोस्तों का नाम है मिर्जादी, पेमा, घनश्याम, महेश
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रात भर बसेरा है सुबह उठ जाना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेट यूडीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: क्या
0: नाम क्या है आपका?
1: राम मनीष।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जोड़ने।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: टाटा सॉन्ग।
0: टाटा सॉन्ग।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ तेरी याद जब जब आती है दर्द भी होता है।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करो।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी हेलो है आपका
1: हेलो
0: नाम क्या है आपका?
1: हेमंत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: वारमल बालाजी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कौन सा?
2: चांदनी रात में गोली चला गया।
0: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: जय किशन नाम है मेरा।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: मैं गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैडम गाना है राजा को रानी से प्यार हो गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का

0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैं।
1: धन्यवाद सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गीत सुना, पिक्चर का नाम है छोटे सरकार और गीत के बोल है मुझे दिल का रोग लगा के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम सोहेल सैफी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: जी गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैम आप आज गाना सुनना चाहते हैं बेरंग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैम, मेरा नाम अक्षिता गुजर है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गुजर मंगल। आपको
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये तूने क्या किया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। तेरी याद खड़ी पाई मन्ने आज तिनी बाहूं जो सिकस।
2: वो बला है इश्क, वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: आपने क्या किया?
1: ओके मैम सुना रहे
0: ठीक है।
1: ओके
2: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी नाम क्या है आपका?
0: मीरा सोनी।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? सुनूंगा सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चोरी कौन सा?
1: कौन सा
0: बड़े जमाना नोट।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन।
3: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: सुखचंद्र मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: तीन वाण के दारी, तीन वाण चलाओ।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: अंकित गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बम साका डांडा डोली वाले का।
1: कौन सा था?
0: बम साका।
1: बम साका
0: डांडा डोली वाले का।
1: ओके सर, सुनो।

0: बड़े बने बेटा पर बेटा न कर रहे।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का।

0: बता दिया।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: हेलो,
4: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जम्मू से केशव शर्मा जी।
3: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: मैंने आज एक फिल्म है बारिश, शायद पुरानी फिल्म है, उसका गाना लहरा के आया है, मौसम ये प्यार का।
3: लहरा के आया है,
4: हाँ, मौसम ये प्यार का ऐसा ही गाना। तो लहरा के आया है मौसम का।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: योगेश जांगड़े।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: मेरा था छत्तीसगढ़।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: प्यासा सावन सुनवा देंगे, मेघारे मेघारे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: गौरव मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी नशिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
0: पल पल जीना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:59। दोस्तों 11:59 का इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: गुलाबी शरारा।
1: हाँ गुलाबी शरारा। हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: लातूर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गुलाबी शरारा।
0: गुलाबी शरारा।
1: हाँ
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राहुल सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सीढ़ी नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: राख भरोसा बापूर है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगा प्रकृति।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम भूमिका गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गोरखपुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ले जा ले जा रे बीजी रात में तू ऐसे मुलाकात ले।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
0: मैम आई विल स्टे हियर जस्ट मी।

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे? पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सिली सिली आंधी है हवाएं।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी सब।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कल्पना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: सर चल नहीं रहा है आपका ये।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नयाद खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: पुराने निजामत गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी सर?
0: भर दे झोली मेरी, ये सर चल नहीं रहा।

भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: अंश कुमार माली।
2: कहाँ से?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:34 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: मैडम मैं महेश बोल रहा हूँ,
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगा पुष्प और उसका गाना है फूलों का तारों का सबका गाना है।
1: कौन सा गाना सर?
0: फूलों का तारों का लाख हजारों में मेरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रुद्र प्रताप।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रात की शिकारी।
0: ओके सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से आप सभी का स्वागत है हमारी रेडियो डीएस 89.6 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम रोजगार और महिला सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है महिला उद्यमिता और रोजगार। दोस्तों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोजगार और व्यवसाय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म सम्मान भी देता है। आत्मनिर्भर महिला, मजबूत परिवार। जब महिला रोजगार से जुड़ती है तो वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर बना सकती है। आर्थिक रूप से मजबूत महिला परिवार में निर्णय लेने में भी आत्मविश्वास महसूस करती है। रोजगार के बदलते अवसर। आज महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पहले से कई अधिक बढ़ गए हैं। ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षण बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और छोटे उद्योगों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे व्यवसाय से बड़ी सफलता। कई महिलाएं छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करती है और धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल करती है। घर से शुरू किया गया छोटा काम भी मेहनत और सही योजना से बड़ा व्यवसाय बन सकता है। कौशल विकास की आवश्यकता। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी है। यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण मिले तो वे आत्मनिर्भर बन सकती है। कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की सफलता। गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। वे बचत कर रही है, छोटे व्यवसाय चला रही है और अपने परिवार की आय बढ़ा रही है। यह बदलाव ग्रामीण समाज को नई दिशा दे रहा है। चुनौतियां और संघर्ष। महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समाज की सोच, संसाधनों की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके रास्ते में बाधा बनती है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से महिलाएं इन चुनौतियों को पार कर रही है। तकनीक से बढ़ती संभावनाएं। आज इंटरनेट ने महिलाओं के लिए दुनिया के नए दरवाजे खोल दिए हैं। महिलाएं सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। महिलाओं को वित्तीय ज्ञान जरूरी।

0: ज्ञान जरूरी है। महिलाओं को बचत, बैंकिंग और निवेश की जानकारी होना भी जरूरी है। वित्तीय जागरूकता उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाती है। परिवार और समाज का सहयोग, यदि परिवार महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा तो समाज तेजी से प्रगति करेगा। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उनके सपनों को भी महत्व देना चाहिए। प्रेरक संदेश, दोस्तों हर महिला में कुछ नया करने की क्षमता होती है। जरूरत है सही अवसर, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास की। यदि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों मजबूत होंगे। धन्यवाद।
1: कैसे हो तुम?

नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रेया भारद्वाज गंगापुर सिटी से। आप सब सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम बेटियों की शिक्षा का महत्व, शिक्षित बेटी उज्जवल भविष्य। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज के विकास और देश की प्रगति से सीधा जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बेटियों की शिक्षा का महत्व। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप एक बेटे को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह बात केवल कहने भर की नहीं है बल्कि समाज की सच्चाई है। हमारे देश में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, प्रशासन और व्यापार तक। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई जगहों पर बेटियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी बेटों को दी जाती है। कुछ परिवारों में अब भी यह सोच मौजूद है कि बेटियां केवल घर संभालने के लिए होती है। यही सोच बेटियों के सपनों को सीमित कर देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा केवल पढ़ना, लिखना या सीखने का माध्यम नहीं है। शिक्षा इंसान को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। एक शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकती है और समाज में आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती है। शिक्षा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। जब लड़की शिक्षित होती है तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता रखती है। बदलती सोच और समाज। आज समाज बदल रहा है। लोग समझने लगे हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। हमने देखा कि बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी और सेना में भी देश का नाम रोशन कर रही है। यह सब संभव हुआ है शिक्षा की वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियां। हालांकि शहरों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई चुनौतियां मौजूद है। कई लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होता है। कुछ जगहों पर सुरक्षा और सामाजिक सोच भी बड़ी बाधा बनती है। कई बार छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और हमें यह समझना होगा कि बाल विवाह किसी भी लड़की के भविष्य को सीमित कर देता है। सरकार की पहल। सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है ताकि बेटियां स्कूल जा सके। माता पिता की भूमिका। बेटियों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास करें और उसे आगे बढ़ने का अवसर दे तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकती है। हमें बेटियों को यह महसूस कराना होगा कि वे परिवार पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत है। शिक्षा और आत्मविश्वास। शिक्षा बेटियों में आत्मविश्वास पैदा करती है। एक शिक्षित लड़की गलत और सही में फर्क समझती है, वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती है। शिक्षा महिलाओं को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। समाज में बदलाव की जरूरत। दोस्तों, केवल सरकार की योजनाओं से बदलाव नहीं आएगा, समाज की सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यदि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। हमें लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म करना होगा। प्रेरणादायक उदाहरण। आज देश की कई बेटियां दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। खेलों में, विज्ञान में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों ने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर वे किसी से पीछे नहीं रहती। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

0: 89.6 Radio DS जहां
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस।

वक्त हो चुका है 2:33 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बोली बिजरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:34 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे कार्यक्रम है बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ आप
1: करना पऊगा जी। कुछ होंगे सदा बहार, जेडे खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जाते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें

0: नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6।
4: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: तो वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
6: हेलो
7: सर, नमस्ते।
6: नमस्कार
7: सर, नाम क्या है आपका?
6: नाम बाबू खान है।
7: कहाँ से बात कर रहे हो?
6: गंगापुर सिटी।
7: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: किया है प्यार तो पड़ेगा निभाना।
7: ओके सर, सुना।

0: नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। गाने के बोल हैं हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आँखों में कजरा है, बालों में गजरा है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल गुर्जर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: सागर बोल रहा हूँ दशहरा मैदान से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना है रेखा और रेखा जब से तुम्हें देखा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा आठ है।
0: कहाँ से बात करें?
1: लंका बोल रहे थे।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: तेरे संग यारा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:45 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: वंदना
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ढोल।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विपिन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: लेके मेरे कार डाल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: हाँ जी, गंगराज मीना बोल रहे हैं स्टेशन रोड गंगापुर सिटी से।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मुझे हीरो बन जाने दो फिर देख तमाशा है।
0: कौन सा सर?
1: मुझे हीरो बन जाने दे फिर देख तमाशा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी मूवी का गाना है।
0: सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: बचपन
5: हेलो,
6: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
5: जी मेरा नाम कविता।
6: कहाँ से बात करे?
5: गंगापुर सिटी।
6: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: किताब सॉन्ग।
6: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार में

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:08 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: ए, तो तेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया और ऊपर

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

सर्दियों में पानी पीना तो कम नहीं कर दिया है। मैं हूँ अर्जी खुशी। सर्दियों में हमें एक जो चीज जो बिल्कुल पता नहीं चलती है वो है पानी पीना। देखो जूस पीना, राबड़ी पीना, दही खाना, ये सब अपनी जगह है, ये सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पानी का काम तो पानी ही करता है। जब भी मैं देखी है ना आपने करीना कपूर का ये स्टेटमेंट, हमेशा याद रखना। बाकी वैसे तो हमारी प्यास बुझाने का काम पानी करता ही है, लेकिन फिर भी जो काम अकेला पानी कर सकता है ना वो बाकी चीजें नहीं कर सकती। चाहे तो आप अपने फोन में रिमाइंडर भी लगा दें कि भाई हमको

लीटर पानी पीना है। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर आपको दे रही हूँ कि हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका वजन 60 किलो है तो कम से कम दिन का 3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी। मिलूंगी कल आपको इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजे खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें ना हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं उन तीन फिल्मों के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। पहली फिल्म दामिनी, दूसरी कुछ कुछ होता है और तीसरी हम साथ साथ हैं। पहले बात करते हैं फिल्म दामिनी के बारे में। इस फिल्म को देखने पर आज भी ऐसा लगता है जैसे ये दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा दामिनी के जीवन में खुशियों के आने की आहट तथा दूसरा हिस्सा जब अपने हक के लिए लड़ रही दामिनी की मुलाकात वकील गोविंद यानी सनी देओल से होती है। इस फिल्म को आज भी सनी देओल के संवादों और कोर्ट में अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्यों के लिए याद किया जाता है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में। इस फिल्म की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। आज भी ये फिल्म जब भी टीवी पर आती है तो लोग इसे देख ही लेते हैं। सन 1998 में रिलीज हुई ये फिल्म की कहानी है राहुल और अंजलि की। अंजलि यानी काजोल जहाँ एक तरफ मन ही मन अपने दोस्त राहुल यानी शाहरुख खान को बहुत पसंद करती है, वहीं राहुल की नजर टिकी रहती है टीना यानी रानी मुखर्जी पर। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में फैशन स्टाइल व लव ट्रायंगल सब है। इस दिल छू लेने वाली कहानी में राहुल की तमाम गलतियों के बावजूद आपको इस किरदार से प्यार जरूर हो जाएगा। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। सफरनामे की आज की आखिरी फिल्म है हम साथ साथ हैं, और आपका और हमारा भी कुछ ऐसा ही नाता है कि हम साथ साथ हैं। हम आपके हैं कौन के बाद किसी पारिवारिक फिल्म को दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला है तो वो हम साथ साथ है। ये कहानी है ममता और राम किशन की, तीन बेटों और एक बेटी की, जिनके बीच बेहद प्यार है। लेकिन इस प्यार की परीक्षा तब शुरू होती है जब माँ अपने बच्चों का बीच बंटवारा करने का फैसला कर लेती है। 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर जैसे सितारों के अभिनय से सजी हुई है। ये फिल्म आज भी अगर कहीं दिख जाए तो लोग इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे 89.6 डीएसएफएम पे। मैं तनिषा,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

अच्छा एक बात बताओ कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आंदोलन? अरे नहीं, ये वाला नहीं, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और मूवमेंट से मेरा मतलब था आंदोलन नहीं, हरकत। हरकतें हम जब बॉडी मूवमेंट करता है, बॉडी हरकतें करती है, वो हरकत क्यों बता रहा, क्योंकि एक फैक्ट के मुताबिक हर सेकंड मैं और आप, हम जैसे नॉर्मल इंसान, हर सेकंड में हमारी जो आंखें होती है वो 50 मूवमेंट्स करती है, यानी हर सेकंड हमारी आंखें 50 अलग अलग प्रकार के हरकतें करती है। लेकिन जब यही रिसर्च भैया गंगापुर सिटी के कुछ लड़कों पे हमने किया तो पाया क्या कि उनकी आंखें 500 तक भैया मूवमेंट करती हर सेकंड में जब वो अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के सामने होते। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिलहाल आप बैक टू बैक अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अच्छा अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ट्यूलिप का फूल दे दो। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और हिंदुस्तान में तो भैया अगर आप पैसे के बदले ट्यूलिप का फूल दोगे तो आपको फिर डिशु। लेकिन अगर आप हॉलैंड में पैदा हुए होते, लेकिन साल 2024 नहीं, साल 1634 में अगर हॉलैंड में पैदा होते तो शायद ये काम करते, क्योंकि उस साल हॉलैंड में वहां के लोगों ने ट्यूलिप के फूल को नेशनल करेंसी बना लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

अगर आप इंसान हो और ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो मुझे नहीं पता उससे कोई फायदा हो भी रहा या नहीं, लेकिन अगर आप गाय हो यानी कि मो काओ तो फिर तो फायदा है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले काओ यानी कि गाय अगर ज्यादा म्यूजिक वो सुनते हैं तो फिर वो ज्यादा दूध देती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अपने ग्वाले तक पहुंचाओ, क्योंकि वो हर रोज आपको दूध में पानी मिला के दे रहे। बोलो भैया प्लीज पानी मिलाना बंद करो और अपने गाय को म्यूजिक सुनाओ। फिलहाल आप म्यूजिक सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझना चाहिए गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद बजना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंद बजना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।